और तब कोई सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था आज जैसा, मतलब क्या चल रहा है बॉलीवुड में, क्या चल रहा है फिल्मी जगत में, ये स्टार डस्ट और फिल्म फेयर जैसी मैगजीन के थ्रू समझता था। स्टार डस्ट और फिल्म फेयर का बोलबाला इस कदर था कि मैं क्या ही कहूँ, कवर पेजेस उनके, एंड ये मतलब बहुत अनोखा था। एंड टीवी इंटरनेट ना होने के कारण फैंस इन्हीं मैगजीन के थ्रू अपने फेवरेट सितारों के निजी जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानते थे। कितना मैजिक था यार, कितना मैजिक रहा होगा यार, है ना। नो स्क्रीन टाइम, नथिंग नथिंग नथिंग, ओनली फन और एक्साइटमेंट रहती थी। मैगजीन्स प्रकाशित होती थी, मतलब पब्लिश होती थी, एंड पब्लिश होने के बाद ही वो खबर पता चलती थी। क्या ही वो दौर रहा होगा यार, इट्स मैजिक, प्योर मैजिक। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड मैं यही कह रहा था कि यू नो लाइक 80s का दौर जैसे जैसे एंड हो रहा था, वैसे वैसे लॉन्च हुई थी यामाहा RX 100, एंड यामाहा RX 100 क्या ही बोलूँ इस बाइक के बारे में, इतने इमोशंस आज भी है ये बाइक के देख के, क्या बताऊँ। मतलब जो बॉयफ्रेंड रहता होगा 80s के दौर में, यामाहा RX 100 पे कॉलेज पे एंट्री करता होगा, एंड उसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड पिछले सीट पर बैठ के लॉन्ग राइड पे जाते होंगे। क्या दौर रहा होगा यार, वो चोरी छुपे इश्क लड़ाना एंड ये चीज़ें, ओह हो, दिल गद गद गद हो गया मेरा रियली। नो इंस्टाग्राम नथिंग, और वो टाइम की लव स्टोरीज तो क्या जी होंगी ना यार लोगों ने, यार मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच अगेन ChatGPT यार, ये सब इमेजिन आपकी वजह से हो रहा है। एंजॉय करते हैं अगला एक बार।

आखिर हो वही गया। मैंने कहा था ना 80s के व्हीकल पे अगर आ जाऊंगा तो पूरा शो व्हीकल के बारे में बात करते करते निकल जाएगा। अब बात छेड़ ही दी है, यामा RX 100 की है। तो रोक नहीं पाऊंगा खुद को। यही कह रहा था कि RX 100 जो थी वो 98 cc का दमदार टू स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन था जो 11 bhp की पावर देता था। इतना मुझे पूरा स्टडी है, याद है मुझे। एंड ये जानी जाती थी गाड़ी उसके रफ्तार के लिए। लगभग 103 kg की गाड़ी थी, मतलब कुछ सेकंड्स में ही ये गाड़ी इतनी अच्छी रफ्तार पकड़ लेती थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसका सिग्नेचर जो था वो उसका एग्जॉस्ट नोट था, क्या आवाज थी इसके लिए ये गाड़ी मशहूर मानी जाती थी। एंड उस दौर में इसकी ऑन रोड कीमत करीब 19,700 रुपीज हुआ करती थी।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। तो इतनी अच्छी गाड़ी बंद क्यों हुई? कुछ तो रीजन होगा। तो जी हाँ, कड़े प्रदूषण नियमों के तहत और टू स्ट्रोक इंजन पर प्रतिबंध के कारण मार्च 1996 में इसका प्रोडक्शन जो है वो बंद करना पड़ा। आज भी ये बाइक पुराने शौकीनों के बीच एक कल्ट क्लासिक और यादगार आइकॉन मानी जाती है। और बीच बीच में अफवाहें थी या रियलिटी थी, आई डोंट नो। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि चोर इस गाड़ी का बहुत इस्तेमाल करते थे। चोरी करने के बाद जिस तरह से इसका पिकअप था वो किसी बाइक में उस टाइम पे नहीं था। तो चोर ये गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ करते थे और चोरी का प्रमाण जो है वो बहुत बढ़ गया था। इसीलिए भी कहते हैं ये गाड़ी का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। ये भी खबरें वो टाइम बहुत सुनने मिलती थी। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।

0: आपने एंजॉय किया ये गाना एंड 80s की बातें तो यार जितनी करूं उतनी कम है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर रिवना नाइट्स। एंड एक बात मैं कहना चाहूँगा कि शहर के नेता अब ग्लेनवुड साउथ के बार और क्लब में मेटल डिटेक्टर कार्यक्रम लागू करने पर विचार कर रहे हैं ताकि हथियारों को अंदर ले जाने से रोका जा सके। इसके अलावा क्षेत्र में पुलिस की गश्त और लाइटिंग को भी बढ़ाया जा रहा है। रैली के मशहूर मनोरंजन क्षेत्र ग्लेनवुड साउथ में बढ़ रही भीड़ और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए रैली पुलिस चीफ रिको बॉयस ने सिटी काउंसिल के सामने ये एक नया सिक्योरिटी प्लान जो है वो पेश किया है और ये सिक्योरिटी प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए ऐसा सबको लग रहा है। एंजॉय करते हैं अगला गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स।
1: यो यो यो।

0: barrel.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट। इस धर्म की नई पुलिस शेफ सिफनी मर्डिस ने कार्यभार संभालते ही शहर में हो रही हिंसक वारदातों को रोकने के लिए अपनी नई रणनीतियों को सामने रखा है। उनका मुख्य उद्देश्य शहर के संवेदनशील इलाकों में गन वायलेंस और हिंसक अपराधों पर लगाम लगाना है, जिसके लिए वो कम्युनिटी पुलिसिंग को जो है वो बढ़ावा दे रही है। एंड क्या है प्लान? वेक काउंटी की स्कूल बसों पर स्टॉप आर्म कैमरे की संख्या बढ़ाई जाएंगी। अक्सर देखा जाता है जब स्कूल बस बच्चों को उतारने के लिए रुकती है तो पीछे से आने वाली गाड़ियां अवैध रूप से बस को ओवरटेक कर जाती है, जिससे थोड़ा खतरा बना रह सकता है। ये कैमरे ऐसी गाड़ियों को ट्रैक करेंगे और उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या बात है।
1: मैं दगड़ू हुई गुंड इंटरपोल से, जो सबसे गंदा फुगड़ी खेलेगा वही किलर होगा। आओ फुगड़ी डांस करे।
2: फुगड़ी फू यू लाइक मी एंड आई लाइक यू टू।

0: रॉकेट गाय फुल जड़ी से तूने भरे ले पॉकेट। अरे बारा बन मेरे जैसा बन, ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर।
1: Oh bhai phu, phu gadi phu, you like me and I like you too. Oh bhai phu, phu gadi phu, you like me.

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड HVAC और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव, इसके साथ ही वेक काउंटी स्कूलों के एयर कंडीशनिंग दैट इज HVAC और पुरानी बिल्डिंग्स को सुधारने के लिए एक बड़े फैसिलिटी प्लान पर भी काम चल रहा है। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि उमस और गर्मी के कारण बच्चों को ऑलरेडी इतनी तकलीफ होती है एंड बच्चों को ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है, तो AC ये तो बहुत मैंडेटरी चीज़ है। अच्छी कंडीशंस में, एयर कंडीशंस अच्छी कंडीशंस में रहेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा सबको लग रहा है एंड वो जायज़ भी है, लगना जायज़ है ना, ये होना चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, और कैसे चल रही है आपकी आज की शाम? आपने भी 80s का ट्रेंड किया फॉलो एंड स्टोरी रखी है आज इंस्टाग्राम या फेसबुक पर? अगर हाँ तो मेरे साथ शेयर कीजिए, जिनकी स्टोरी बेस्ट लगेंगी गाने के साथ उनका नाम ऑन एयर ज़रूर लिया जाएगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मौसम का हाल क्विकली जान लेते हैं कि आज का अधिकतम तापमान जो है वो 89 फारेनहाइट मतलब करीब 31-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है और आसमान में हल्के बादल जो है वो छाए रहेंगे। देन गुरुवार और शुक्रवार को तापमान और बढ़कर 92 फारेनहाइट से 94 फारेनहाइट तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी का एहसास ज़्यादा होगा। मतलब जोर का झटका जोर से ही लगे भाई इतने गर्मी में कौन सा झटका धीरे से लगने वाला है। इसलिए अपने आप को हमेशा पानी पिलाते रहना चाहिए, हाइड्रेटेड रखना चाहिए, साइंटिफिकली भाषा के बारे में अगर बात करूँ तो। एंड यस, एयर कंडीशन का तो मैंने आपको अभी मुद्दा जो था वो बताया ही। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना, क्योंकि मौसम बन चुका है एक अच्छा गाना सुनने का। सुनते रहिएगा रेडियो नायरा।

छड़ी ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड अलर्ट अलर्ट अलर्ट। इलाके में एक रैकून का रैबिट्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। प्रशासन ने पालतू जानवरों के मालिकों को सावधान रहने और उन्हें समय पर वैक्सीन लगाने की सलाह दी है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, ये सावधान रहना काफ़ी ज़रूरी है। एंड यू नो टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है एनिमल की, यार वैक्सीनेशन उनको देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग डॉग्स वॉग्स पेट जो है वो पाल तो लेते हैं लेकिन उनको वैक्सीनेशन देने में बहुत केयरलेस हो जाते हैं। तो अपनी मतलब आपकी सुरक्षा के लिए और एनिमल्स की पेट की सुरक्षा के लिए आपको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप किसी वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं एंड जानकारी ले सकते हैं। आप कृपया आपका

तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: बोलेगा कि मेरे पास का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 91 नाइट्स एंड बहुत बार, मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट थिंक सो ऐसा सबके साथ हुआ होगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग ना पेट जब नए नए लेके आते हैं अपने घर पे तो बड़ा लाड़ प्यार से संभालते हैं, उन्हें रखते हैं, और उसके बाद उनका इतना जान पे आता है उनको खाना खिलाना, उनको वैक्सीनेशन देना, उनको घुमाना, कि मैं क्या बताऊँ। मतलब इस वजह से पेट का जो है वो नुकसान होता है, इमोशनली भी और फिजिकली भी। यस, एंड धीरे धीरे फिर वो चीज़ें खराब हो जाती है, केयरलेस हो जाती है, उसके बाद कुछ रोगों का संक्रमण हो जाता है, रोगों का संक्रमण होने के बाद पेट आपका और सज़ा किसी और को भुगतनी पड़ती है ना। तो ये चीज़ें बंद करनी होगी अगर आपको ख्याल रखना है उनका, आप रिस्पॉन्सिबल हो कि कुछ साल आप उनका ख्याल रख सकते हैं, मतलब बहुत साल आप उनका ख्याल रख सकते हैं, तो ही आपको पेट को रखना है, वरना ना रखिए प्लीज़।

मेरे जैसी युवती नहीं, सर पे चढ़ी है जैसे कोक में बातें बातें करती है तुम, ABCD उसकी होती F से शुरू और U पे खत्म।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट। सो थिंग इज दैट अगर आप उतने रिस्पॉन्सिबल हो कि आप आपके पेट को अच्छे से रख सकते हो तो ही पेट घर में लाए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि आपकी कोई हॉबी है। कोई आपके घर में आ रहा है तो उनका पालन पोषण करना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको अच्छे से करना ही होगा, है ना। आप अगर नहीं करते हो तो फिर कुछ साल करते हो, बाद में अडॉप्शन के लिए देते हो, अडॉप्ट करने के बाद किसी ने अगर वो लोग नहीं कर पाते टेक कर तो फिर क्या। इसलिए जल्दबाजी ना करें, अपने आप को पहले प्रिपेयर करें कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, देन यू कैन डिसाइड कि पेट रखना है या नहीं रखना है। और इतना ही कहूँगा, सावधान रहे, सतर्क रहे, और मैंने जो भी आपको बताया है वो आप थोड़ा फॉलो करें, ज़रूरी है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना एंड टेक केयर।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: Hi everyone, this is Mohit Lalwani. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाना अच्छा लगा. Subscribe to the channel. नीचे एक bell icon बना हुआ है छोटा सा, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी अगली वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहेंगी. ऐसे प्यार करते रहिए. Lots of love.
1: Radio Nayara पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि.

0: वीडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल.
1: We are delighted to bring our play.
2: जाने पहचाने
1: अनजाने. Can you meet together all of you?
2: जाने पहचाने अनजाने.
1: Dedicated superstars of this play are saying जाने पहचाने अनजाने, and our tour starts from 5th in Houston. Our friend Rajender of Star Promotion is bringing this play to various cities. Lot of cities are booked, and there are certain cities which are going to be still. And if you have any issue, if you problem, please look at the number. And call up and bring this play to your city. The play deals with togetherness and different generations. It's music by
3: Anumalai.
4: And lots of laughter.
1: Lots
4: of emotions.
2: You lots of cry.
1: She also speaks in between. She is everybody. My name is Anupam Kher.
4: I'm Meghna Malik.
5: I'm Swarup Sampat.
6: Maya Sharma.
7: Shraddha Mandale.
8: Carmen D'Souza.
9: Gajendra Hire.
1: Writer director Gajendra Hire.
4: Yes.
10: Writer director Gajendra Hire. I am Vikas Rawat.
4: Yes.
1: And we are coming to America and to Canada. Rajender ji, jamado.
4: बेसब्री से इंतजार है आप लोगों से मिलने का.
2: जाने पहचाने
4: यूएसए.
1: अपने अलग अलग भाषाओं के लोग आ रहे हैं. बच्चुस कोशुर बकरकशुर पटका.
5: जरूर आओ जो टिकट लाइने मजा उसे.
4: राम राम जी. जल्दी से जल्दी मिलने आ रहे हैं थारे ते.
6: अम्मी सब एक साथ आ रही थी अमेरिका. आपने सबसे मिले ला
1: देखा. अलग अलग भात भात के और कोई भी
9: नक्की आ. सुंदर अनुभव. सुंदर एक अनुभव घेऊन जा.
5: लवकर लवकर टिकट बुक करा
10: प्लीज. बन्नी जास्ती जना बन्नी एल्लारू बन रही.
1: अरे वाह. इंडिया विल बी सून इन यूएस एंड कैनेडा विद द प्ले.
11: मूवी देखी थी. पाव भाजी खाई थी. पंजी गए थे.
12: रॉन्ग. 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है. अरे भूली गया. आ डेट तो याद रखवानी छोए. गरबा लवर्स आर यू रेडी. ऑन ऑक्टोबर बीजी रिधम अने रास लाइने आवे छे गरबा नाइट. चनिया चोड़ी अने केडियू रेडी रखो. एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल. Join us Friday, October 2nd at 7 p.m. at Haveli Apex. Dance to the incredible beats of Amruta Manke and Nimesh Nagar with live music, delicious food, family, friends, and Raat Bhar Garbani Moj. Early bird tickets only until September 7th.
11: Tickets on Sulekha or Check the Rhythm and Ras Flyer on Radio Naira's Facebook, Instagram or RadioNaira.com. One beat, one circle, One Community.
0: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल.
13: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो. जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल. लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशा.

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: Good morning, hello, hi, namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM and 99.9 FM, SD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and Talk. Well, good morning, morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But thinking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabrein sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है। वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की। सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 414 90 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM 99.9 FM SD 414 90 AM 99.9 FM SD 44 नारा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। हमारे ट्रायंगल में 2060 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है। इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल्स आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर ट्रांसफॉर्मिंग विंस्टन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यूज। Artists, audiences, and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week through many stage production, engaging program, and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नाइट पर। पक्का देसी पक्का लोकल।

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन्हें दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ऐ

फैंटास्टिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM 99.9 FM SD4 for the 90 AM and 99.9 FM SD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूल्स एंड टॉक उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान 9 जेम्स ज्वेलरी जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट 9 जेम्स ज्वेलरी वेस्ट कैरी 27519 अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454 फिलहाल कहीं जाइए या नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम HD4 फॉर द 90 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल डून संटॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में? क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: at me on the mic, writing what I feel.
1: इस ऑसम ब्लॉसम गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4 for 90 AM, 99.9 FM, HD3 for Telugu, नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून्स एंड टॉक। वेल, हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी चेरी पॉइंट एयर शो होने वाला है। हेडिंग द 2026 इवेंट इज द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी US नेवी ब्लू एंजल्स जॉइंड बाय एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्ट दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कैप्टिवेट फन फेवरेट performances such as Jet Truck, Parachute, Jump Team and Aerobatic Pilot and Randy Ball, RJ Glitter and Tom Larkin are already slated to return. The show is free and open to the public throughout. The base pass is required for entry. For more information, check their website. Filhal kahin jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayra, Paka Desi, Paka Local.

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। वेल मॉरिसले रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है। इंट्रोड्यूसिंग रच्चा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद अब आपके शहर में। गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए। ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में। ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस। दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि रच्चा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम। नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून रच्चा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल टूल्स एंड टॉक्स।
1: बुलेवार्ड ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Naira, pata local.

वेलकम है ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 49 AM है, 99.9 FM HD3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। कहा जा रहा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गए हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें, ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

इस धमाल की राजधानी के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 49 AM, 99.9 FM, LG3 मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक्स। ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 450.40 स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है। डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉर्थ Greensboro Speedway. Experience thrilling NASCAR action live. Feel the roar of engine and pure excitement of high-stakes racing. Point racing is back at North Greensboro. It's summertime time and spectacles at one of the NASCAR's most historic tracks. Don't miss epic tailgates and high-stakes racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुन रही है मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 40 90 AM, 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा फेम है। हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक। विल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिस सप्लाई एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन। With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Freywork, Fire and Refuse to support local equipment purchases, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस्मत के लिए जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइगा, पक्का देसी पक्का लोकल।

माहौल गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM, 99.9 FM HD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली, ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है। हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu, Radio Naira सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक पर, ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लो।

लेट्स नो कि मिर्जापुर द मूवी कितना भौकाल मचा रही है। This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, Mirzapur, the movie, continues its strong box office run, collecting ₹193.43 crore worldwide in 6 days. The Pankaj Tripathi, Ali Fazal and the Vendu starter is now just ₹6.5 crore away from entering the ₹200 crore club. The film earned ₹12 crore net in India on day 6, taking its India net total to ₹137.65 crore, while its overseas gross stand for ₹29 crore. Yeah. कंटेंट ऐसा दो कि भोकाल मची जाए, यू नो, पैसों में भी, ऑडियंस में भी, और पूरा गर्दा मचा हुआ है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ओनली ऑन नायरा।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

जिनको 80s वाला ट्रेंड कर लिया, क्या इंस्टाग्राम खोलते ही आजकल मतलब हर किसी का 80s वाला पिक्चर देखने को मिल रहा है। बाय द वे, यू हैव ट्राइड इट और नॉट? मैंने तो नहीं किया यार। मुझे ना बेसिकली ट्रेंड्स पे हॉप ऑन करना उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, बट दूसरों की फोटोज देखने में मजा तो आ रहा है। This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, Kiara Advani, Siddharth Malhotra, Paniti Chopra, Raghav Chadda and other celebrities are joining the viral AI trend, reimagining themselves in stylish 1980s inspired look. The retro makeover has taken social media by storm. They are looking actually really good, yaar. Matlab, maine jab Kiara aur Siddharth ki photo dekhi, it's totally giving Barbie and Ken vibes. It's so beautiful. Stay tuned for more, only on Naira.

Finally, Jennifer Lawrence has made her Instagram debut. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And Jennifer Lawrence has finally entered the Instagram world. The Oscar-winning actor joined the platform after years away from social media and has already started following several Hollywood stars, including Leonardo DiCaprio and Dakota Jackson. देर आए दुरुस्त है, मैंने ये चीज नोटिस की, बहुत से हॉलीवुड स्टार्स इंस्टाग्राम पर नहीं है, या मे बी वो ऐसे प्राइवेट अकाउंट यूज करते हैं. आई डोंट नो, दे डोंट हैव देयर स्टार वाला अकाउंट. अच्छा है यार, क्योंकि अभी तो हम सब इसको देखो उसको रील एडिक्ट हुए पड़े, सभी इंस्टाग्राम पर होते हैं आजकल. तो मैं भी रील देखने लग गई हूँ, पहले आई वॉज वेरी सेन अबाउट दिस, लेकिन अब ऐसा रील स्क्रॉल करती हूँ पूछो मत. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ओनली ऑन नायरा.

अरे वाह, इमेजिन योर इंस्टाग्राम अकाउंट हैज बीन मेड बाय श्रद्धा कपूर. कैन यू इमेजिन दैट? बट सम पीपल आर एक्चुअली लकी टू हैव दिस. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, Divyendu revealed that it was Shraddha Kapoor who created his Instagram account when they were working together on Batti Gul Meter Chalu. Speaking to Neha Thupia on Double Date, he said, "Mera Insta banaya to Shraddha Kapoor ne jab hum Batti Gul Meter Chalu kar rahe the. Pyar ka panchnama aur chashme baddoor kar chuka tha main usse pehle, lekin main Instagram pe nahi tha." Yeah, in back days, Instagram was not a big deal. You know, that was not that huge jo abhi hai. Wo to proper ek business platform बन चुका है जिस कदर लोग उसमें ब्लूम कर रहे हैं. आई एम माई सेल्फ क्रिएटिंग कॉन्टेंट थ्रू इंस्टाग्राम. यू नो, अगर आपने मेरा पेज अभी तक के नहीं देखा है तो प्लीज गो वॉच. इंस्टाग्राम पे मैं आपको इंफोटेनमेंट कॉन्टेंट देखना है तो मिल जाती हूँ बाय द नेम भारती राठौर. और अगर आप एकदम कैजुअल चिल पिल इन्फ्लुएंसर वाइब चाहते हैं देन आई एम ऑल्सो अवेलेबल बाय द नेम आरजे भारती. दो अकाउंट्स हैं मेरे, आप किसी भी एक में जाएंगे तो आपको दोनों अकाउंट का पता चल जाएगा. जरूर देखना, अच्छा लगे तो फॉलो करना और कुछ प्यारा सा डीएम भी करना. लेट मी नो दैट you are listening to me, okay? And now enjoy.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: अरे बाप रे, मुझे तो फैंस समझ में आते हैं, पर वो फैंस समझ में नहीं आते जो अपने हाथों पर, छाती पर, पैरों पर और कहाँ कहाँ पता नहीं अपने फेवरेट आर्टिस्ट का टैटू बनवा लेते हैं। यार इतनी इनसेन चीज़ आप कर सकते हो? समटाइम्स लवर्स ऑल्सो डू फॉर देयर पार्टनर, बट इट्स वेरी वियर्ड, राइट? This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency Naira. And you know, fans are taking their love for Ali Fazal's Guddu Pandit from Mirzapur to the next level, with several getting tattoos inspired by the iconic character, including one fan who got Ali's face inked. Reacting to the overwhelming fandom after Mirzapur the movie, Ali said he felt touched and overwhelmed, calling the love in the tattoos truly surreal. It's actually, yaar, main to soch bhi nahi sakti. Stay tuned for more only on Naira.
1: खुश रखेगा ना हमारी आशा को। जरा ऊंचा बोल, पंजाबियों का गा रहा है
2: जी।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

मेरा जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4, 101.9 एफएम एंड 1490 AM। वेल, अब तक थे हमारे साथ ब्राउन इमिग्रेशन लॉ से केल्सी एंड ऋषि, जिन्होंने खूब सारी इन्फॉर्मेशन दी विथ डिफरेंट, जितना हो सकता था। आई थिंक दे कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वी टच बेस्ड द यू नो कि इम्पॉर्टेंट जो भी वीज़ास है और स्टेटस है और जो रिसेंट अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, अभी और भी होंगे, तो उस बारे में हमने डिस्कशन किया था। एंड डेफिनेटली दिस पॉडकास्ट, अगर किसी ने नहीं सुना है इमिग्रेशन पॉडकास्ट को जो अभी हुआ था, उसे आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। वेरी सून वी विल बी पोस्टिंग इट ऑन यू नो यूट्यूब, तो वहाँ पे आपको मिलेगा यू नो द इन्फॉर्मेशन विथ रिगार्ड्स टू, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस विथ रिगार्ड्स टू इमिग्रेशन, देन यू नो होम टू रीच आउट। तो या वेल, हमारे शो में अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों की। सो रिसेंटली हमने किया था भजन जामिंग। आई होप जितने भी लोग आए थे, और यू नो इट वाज रियली अ वंडरफुल इवेंट व्हिच वाज ऑन लास्ट वीकेंड, और बहुत अच्छा था, बहुत ही नया एक्सपीरियंस के साथ हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल हु केम, एंड इट वेंट रियली वेल, बहुत अच्छा था। एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस एज वेल। रेडियो नायरा का इवेंट और मज़ा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। वेल और या द टाइम इज 6:19 नाउ, एंड वी विल बी सून हैविंग अनदर गेस्ट विद अस। और तब तक के लिए आप सुनिए नेक्स्ट गाना, जो कि है श्रेया घोषाल का, ऑफकोर्स। Here you go guys, after this song, and then we have another Azmale from Operation Safed Sagar. So, in dono ke baad hum milenge fir se with new guest. Thank you.

ऑल ऑफ यू, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग, 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। कैसे चल रही है आपकी आज की शाम? आज की शाम के बारे में मैं कहूँ तो ये शाम जो है ये काफ़ी ब्यूटीफुल मुझे नज़र आ रही है। एंड इस प्यार भरी शाम में अगर कुछ अच्छे गाने आप सुनते हैं और उसके साथ अगर एक अदरक की प्याली आपके हाथ में हो तो मज़ा ही आ जाएगा। एक गरम चाय की प्याली हो, अब आपको पिलानी वाली है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक गरम चाय की प्याली तो डेफिनेटली चाहिए। तो मैं यही कह रहा था कि आपने ट्यून इन किया है रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स ये शो, और मैं सुनाने जा रहा हूँ इस शाम का पहला ये गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

वेलकम बैक, एंजॉय किया आपने ये गाना। गाना था वाकई में काफ़ी ब्यूटीफुल, जिसने सेट कर रखी है इस शाम की वाइब। तो अब वक्त हो चुका है रुक करने का रैली दरम NRTP की लोकल खबरों की ओर। तो पहली खबर जो है वो रैली से आ रही है। खबर यह है कि रैली में आज से कचरा उठाने का नया नियम लागू हो गया है। अब शहर में खुले पत्ते सड़क किनारे जमा नहीं किए जाएंगे एंड निवासियों को अब हरे रंग के डस्टबिन या विशेष बैग का इस्तेमाल करना होगा, जिसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। और विरोध इस वजह से कर रहे हैं कि लोगों का शायद काम बढ़ रहा है या फिर लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली आपको क्या लगता है, क्या ये नियम लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। इन्जॉय करते हैं ये गाना जो कि सेट कर देगा आपकी इवनिंग की वाइब।

मतलब कचरे को डिवाइड करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इंडिया में पता है क्या, कचरे वाले भैया आ गए ऐसा कहा जाता है, जो कचरा साफ करने आते हैं उनको। मुझे ये नहीं समझता कि कचरा करने वाले हम लोग हैं, वो तो कचरा साफ करने वाले लोग हैं, तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट क्या है, परंपरा इस परंपरा एक बार पड़ जाती है तो बस वही परंपरा कायम रहती है। तो ये चेंज भी इंडिया में करना चाहिए कि कचरे वाले भैया को कचरे वाले भैया के नाम से ना बोला जाए, है ना। तो एक तरफ ये है कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि डस्टबिन में, ग्रीन डस्टबिन में या कुछ कैरी जो भी बैग्स है उनमें कचरा ये ना डालने के लिए। एंड दूसरी खबर है ट्रैफिक रिलेटेड, तो आज से लेक विलर रोड का एक हिस्सा अगले 2 सालों के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ $21 मिलियन का एक बड़ा रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसलिए आपको रूट जो है वो बदल के जाना होगा।

तो अगले 2 सालों तक यह रूट जो है वो बंद रहने वाला है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड मैं यही कह रहा था कि यार आज का मौसम थोड़ा उमस से भरा है, लेकिन क्या करें, मज़ा तो आ रहा है क्योंकि शाम का वक्त है एंड शाम का वक्त घर लौटने का वक्त माना जाता है। तीसरी खबर यह है कि शैली लेक से बचाए गए एक चमगादड़, दैट इज बैट, में रेबीज वायरस पाया गया है, इसलिए प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने को कहा है। जी हाँ, मतलब सतर्क रहना ज़रूरी है और सतर्कता ही हर चीज़ का समाधान है। अपने आप में एक अलर्टनेस चाहिए, अपनी खुद की केयर खुद ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, एंड मैं तो पूछना ही भूल गया, कैसे हो आप, कैसे चल रही है आपकी शाम? खुश तो हो ना, खुश रहिएगा क्योंकि खुश रहने की कोई कीमत नहीं होती।

रेडियो नायरा 101 नाइट्स एंड फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क जा रही डेल्टा फ्लाइट को कल रात अचानक RDU दैट इज दरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा। विमान के केबिन में अचानक अजीब सी गंध फैल गई थी। खुशकिस्मती से सभी 108 यात्री सुरक्षित उतार दिए गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा हादसा हुआ नहीं है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत काम करता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ये जो हादसा होने वाला था वो हादसे से सब लोग बच चुके हैं एंड कोई दिक्कत नहीं है, मेजर इशू कुछ भी नहीं है। वो तो सही टाइम पे पता चल गया एंड सही टाइम पे चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट कर दी गई। तो सही टाइम पे सही चीज़ों का डिसीजन लेना ये काफ़ी अहम होता है, जो कि लेना चाहिए। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।